0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी

प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड़ काम इतनो आराम सो स्टार्टअप योर डे विद रेनबो फन डे रेनबो फन डे
2: रेनबो फन डे रेनबो फन डे
1: म्यूजिकल साथ रियल लाइफ बात सिनेमा नाटक भटकंती खास स्टार्टअप योर डे विद रेनबो फन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रीमन महागणाधिपतये नमः। चला मुलीच्या आई वडिलांनी कन्यादानासाठी खाली पाटावर बसा।
2: अगं शिल्पा, येईल का खाली बसता?
3: गुरुजी, जरा स्टूलवर बसू का? माझे गुडघे भयंकर दुखतात, खाली बसूच शकत नाही।
2: बऱ्याच डॉक्टरांनी तर हिला ऑपरेशनचा सल्ला दिलाय।
1: अहो, तुम्ही एक काम करा, सरळ पिंपरी चिंचवडच्या डॉक्टर परीक्षित फेगडेंकडे जा। तुम्हाला सांगतो, माझे गुडघे डॉक्टर परीक्षित फेगडेंनीच पूर्ण बरे केलेत। मी 5 वर्षे मांडी घालून पूजा सांगितली नव्हती। आता बघा, मी पाटावर बसून पूजा सांगतोय, तुम्हीही डॉक्टर परीक्षित फेगडेंचे उपचार घ्या। अहो, तिथे गुडघ्याची झीज, मणक्यातील गॅप आणि जुनाट संधिवात यावर 100% खात्रीशीर आणि चांगले उपचार आहेत। डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे उपचार, तेही विना ऑपरेशन।
2: अहो गुरुजी, आता शिल्पाला तिथेच नेतो हा, पण डॉक्टर फेगडेंचा नंबर असला तर द्या ना गुरुजी।
1: हा घ्या नंबर, सोपा आहे, 95-95-24-25-59।
4: डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक, संपर्क 95-95-24-25-59।
1: इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो।

0: जारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
4: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह घटना कल दोपहर दक्षिण

0: स्कीम के समर्थन में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर गति। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा। कितना खूबसूरत गाना हमने सुना। सबसे पहले कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, अब क्या मतलब, अब क्या बात करें। लेकिन अभी तो बहुत सारी बात करनी है, क्योंकि मैं हूँ आज आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, मस्त मुंबई कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अवनी। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। वैसे सुबह का समय है और कहते हैं ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं इसी टाइम पे, तो कुछ याद आया कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्त धनम। विद्या भोग करी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूजिता न तो धनम विद्या विहीन पशु हो। कहने का मतलब है कि सचमुच विद्या जो है वो ही मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है और अत्यंत ही रक्षित किया हुआ गुप्त धन है। कुछ भी चला जाएगा लेकिन विद्या नहीं जाएगी। विद्या भोग कीर्ति और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। परदेश गमन के लिए भी मतलब वो समय पे भी विद्या अपना स्वजन है, क्योंकि हमें अपनी जो लैंग्वेजेस या जो भी पढ़ा है वो हमें उस टाइम पे याद आता है, उपयोगी होता है। और विद्या जो है वो श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। और बिना विद्या मनुष्य पशु समान है, इसीलिए समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो इसी बात पे मुझे एक गाना याद आया जो कि लता मंगेशकर और दिलराज कुमार की आवाज़ में है। चलिए सुनते हैं ये गाना, ये प्रार्थना।

माता सरस्वती शारदा। सुबह सुबह हमने माता सरस्वती जी को याद किया है, खास करके हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि जब भी स्कूल पे पढ़ाई पे जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो उनको सिखानी चाहिए। खैर, हमारे साथ हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, किशोर नायक, विजेंद्र घाटोल, प्रणव शिंदे, रजनीकांत पाटिल जी, प्रकाश शिंदे, पंकज मोहत जी, रजनीकांत पाटिल हैं, फिर किशोर नायक जी हैं और हितेंद्र दास जी हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन है, दिलीप पाटिल है, विश्वास चांदोरकर है, प्रमोद छिंचोलकर हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। वैसे हम सभी को जवाब नहीं दे पाते लेकिन आप सब हमारे साथ ही है, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे 8:52 होने को है, हो चुकी है, तो गाने तो हम सुनेंगे। और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे फेवरेट कहते हैं ना गीतकार है, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन है, जन्मतिथि है, तो आज उनके गाने तो हम मतलब क्या कहें, ऑब्वियसली बजाएंगे। उनके लिए ऐसा है कि आप पूरा दिन बजाओ तो भी उनके जो गाने हैं वो दिन कम पड़ेगा, गाने इतने सारे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं के गाने प्ले की करें। और बस अभी हमें योगा के बारे में भी बात करनी है लेकिन एक मस्त गाना सुनते हैं और उसके बाद आज आपने क्या किया है वो मुझे बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours।
1: नमस्कार, एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारे लिसनर्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ गए हैं, और भी जैसे कि दीपा पालकर भी है, दीपाली शिरोडकर, प्रमोद चिंचोलकर और फिरोज सिगनपुरिया, जयेश भट्ट, डॉक्टर अंजू जी और दीपाली शिरोडकर। हाँ, अभी हमने याद किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर कहना चाहूँगी। और अभी हमने बात की थी कि भाई आज का आपका योगा हो गया, कि क्या किया आज आपने। तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके। दीपा पालकर जी बता रही है, गुड मॉर्निंग, आज मैंने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की, फिर शवासन किया 15 मिनट, 30 मिनट वॉकिंग किया, वृक्षासन किया, ध्यान धरना 10 मिनट किया, बहुत ही अच्छा किया। मतलब ये सब चीज़ें अगर रोज़ होता है, कभी कभी कंटाला आता है, और ख़ास करके ऐसे जो क्या बोलते हैं बारिश की मौसम में ज़्यादा ये होता है कि चलना कल कर लेंगे, तो कल जो है वो कभी नहीं आता है ना। तो ऐसा हमें करना बिल्कुल नहीं है। और भी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे हमारे साथ सुनील गायकवाड़ जी भी जुड़े हुए हैं, फिर प्रकाश शिंदे जी बता रहे हैं कि आज का जो हमारा योगा है वो हो गया है, एक्सरसाइज हो गई है, वेरी नाइस। तो मैं आपको आज क्या बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने प्राणायाम के बारे में तो बहुत बार बात की है, लेकिन प्राणायाम जो है वो अपने नर्वस सिस्टम के लिए भी उतने ही उपयोगी है। जैसे हमारी जो नर्व्स हैं, यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे मांसपेशियाँ जो है, उसके तनाव को, स्ट्रेस को कम करने के लिए तंत्रिका जो तंत्र है उसको आराम दिलाने में, बालासन योग तो आपको मालूम होगा, कई बार आपको जब सोने का हमें मन होता है तो कई लोग बालासन में सोते हैं, और वो सबसे बेस्ट आसन है जो काफ़ी फायदेमंद है। और मिला के 8 प्राणायाम ऐसे हैं जो काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें से हम कुछ तो करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, फिर भस्त्रिका है, भ्रामरी है, भ्रामरी भी तंत्रिका के लिए मतलब नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, उज्जयी प्राणायाम भी, उज्जयी अगर आप करते हो तो मुझे बताना कभी, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम जो है वो बहुत कम लोग करते हैं लेकिन बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें आपको वहाँ पे मतलब गले पे ज़्यादा फोकस रहता है और आपका जो थायराइड है वो उससे अच्छा हो जाता है, और नर्वस सिस्टम जब ठीक से काम नहीं करती तब पूरे शरीर का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। वैसे तो नर्व सिस्टम काम नहीं करती तब आपको B12 भी दिया जाता है, तो आपको वो भी प्रॉपर मात्रा में लेना है। और मूवमेंट हमारा क्यों कम हो, वैसे हम कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम सब एक साथ हैं और हम अपने खुद पे ध्यान रखेंगे, आहार पे ध्यान रखेंगे, अपने काम पे ध्यान रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखेंगे, तो और क्या चाहिए। और साथ में तो रेनबो है ही। बस एक और गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो कि लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। आज आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन है, जन्मतिथि है FM रेनबो, और हम सब की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं कि हम आज भी इतने जो उनके गाने, खूबसूरत गाने जो है वो आज भी सुनते हैं और मज़ा आ जाता है। आप एक एक गाने उनके अलग अलग हैं। चलिए एक और गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

वैसे प्राणायाम की बात हो गई और जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता दूंगी, प्रोग्राम चल रहा है मस्त मुंबई और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अवनी भट्ट। अभी हमारे साथ है कल्पना जी है और राजू जी है और आज की जो हम बात करने जाए तो जैसे कि हमने बताया कि आपका योगा हो गया होगा और आपका आहार जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, यानी कि वैसे तो मैं आपको बता दूं, बताना नहीं चाहिए, आज जंक फूड डे है तो जंक फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए एक्चुअली तो, लेकिन हाँ चीट मिल चल सकता है तो मैं ही आपको बोल रही हूँ चीट मिल कभी कभी चलता है, जैसे कि आपने वड़ा पाव खा लिया या तो फिर बर्गर खा लिया, बट कभी कभी यानी कि महीने में आप एक डिसाइड कर लो कि मैं 2-3 बार ही खाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता है कि क्या होता है, तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, तो ज़्यादा तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी बट 20% यू कैन ईट, ठीक है। बट हमें क्या खाना है, हमें मिलेट्स खाना है, जैसे कि रात को आपको भिगो देना है और सुबह उठ के उसको चावल जैसे बनाते हैं उस तरह आंबिल भी बना सकते हो, उसको अगर आपने उबाले हैं तो उसको एक कॉटन का जो कपड़ा रहता है उससे बांध दीजिए, फिर फर्मेंटेशन हो जाता है और सुबह उठ के आप उसमें जैसे कि हम लस्सी बनाते हैं छाछ है तो उसमें डाल के उसमें सत्तू पाउडर भी आप डाल सकते हैं जिससे प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलता है और मतलब फर्मेंटेशन वाला खाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा ज़रूर होगा और उसमें ग्लूटेन है, मतलब ग्लूटेन फ्री है, इसलिए डायबिटीज़ है या फिर बीपी है वो होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब होगा तब देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अभी से ध्यान रखेंगे ताकि आप एकदम एक्टिव रहोगे तो अच्छी सोच अच्छे विचार आएंगे और अपना जो काम है वो अच्छा होगा। तो इसी बात पे एक और गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुनते रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी के साथ ओनली ऑन FM Rainbow।

खन्ना की तमन्ना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में सुना, आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए बोल और आर डी बर्मन्दा का संगीत, और फिल्म हीरा पन्ना से आपने ये गाना सुना। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें पता चले, मतलब आर डी बर्मन्दा के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर के साथ उन्होंने काम किया था। इतने सारे गाने हैं कि आप जब भी घर पे भी सुनोगे ना, तो आप सोचोगे कि ये गाना इन्होंने लिखा है, ये गाना नहीं उन्होंने, और कुछ तो आपको पता भी नहीं होगा, अच्छा ये गाना भी आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, बहुत ही कमाल। अभी जैसे आज की बात करूँ तो आज है 21 जुलाई, और आज का जो एक ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में बताने जाऊं तो देश की महिलाओं के लिए 21 जुलाई का जो दिन है वो खुश होने की एक खास वजह लेकर आया। आज के दिन 2007 में देश को प्रतिभा पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली, और वो देश का ये सर्वोच्च संवैधानिक पद जो ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो हमारे लिए ये बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे और हम उनसे इंस्पायर होते रहेंगे। और आप लोगों के मैसेज भी हमें आ रहे हैं, जिसमें पूरे मैसेज तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलेगा ज़रूर बताऊंगी। जैसे हमें रोशनी जी बता रही है कि गुड मॉर्निंग, मैं रोज़ बैक पेन रिलेटेड योगा करती हूँ और हमेशा योगा के टाइम पे FM रेनबो सुनती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, और सुनने में मतलब बीच में न्यूज़ भी है, सॉन्ग्स भी है, बातें भी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रोशनी, हमें भी बहुत अच्छा

0: लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा एफएम रेनबो के माध्यम से आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप उसको सुनते भी हैं, गाने भी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज तो गाने, आज ऐसा एक लग रहा है कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है कि आनंद बख्शी साहब का बर्थडे है आज। एक और गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ, ओनली ऑन एफएम रेनबो।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें।

0: रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉसमॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कुछ याद रह जाता है जो हमारे कहते हैं ना पहलू है हमारे, हमने जो मोमेंट्स हैं साथ में बिताई है ऐसी चीज़ें। आनंद बख्शी साहब को आप कोई भी, मुझे जहाँ तक याद है आडी बमंदा और वो

साथ में बैठते थे और कभी कभी ऐसे ही मतलब चुटकी बजा के गाना बन जाता था। तो ऐसे भी गाने जो हैं वो हम सुनेंगे, लेकिन आज के बारे में बताऊं तो आज है 21 जुलाई 1893 में कोलकाता में आज ही के दिन भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की कोलकाता में शुरुआत हुई और 1884 में लॉर्ड्स के मैदान पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो खेला गया और 1904 में 13 साल तक चले निर्माण कार्य के बाद रूस में कहते हैं कि 4607 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन का जो काम है वो पूरा हुआ था। आज तो ये जो कहीं पे भी मतलब पूरे विश्व में कहीं पे भी ऐसा काम जो होता है वो टेक्निकल माध्यम से बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें करनी है 21 जुलाई को क्या हुआ था, लेकिन एक और गाना जो बहुत ही खूबसूरत सा है और ये आनंद बख्शी साहब ने 1972 में लिखा था आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गाना हम सुनते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि अवनी के साथ FM रेनबो पर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आज है 21 जुलाई और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। 1963 में आज ही के दिन काशी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और स्वतंत्रता आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन के दौरान इस संस्थान को बिना किसी ब्रिटिश सरकारी सहायता से शुरू किया गया था। 15 जनवरी 1975 को उसे पूर्ण राज्य यानी कि विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था और वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। काशी को जब भी आज मतलब बनारस को हम याद करते हैं तो सबसे पहले हम विद्या के नाम से ज़रूर याद करते हैं, है ना। तो ये जो है वो हम आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं और ये जो काशी विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो भी आज ही के दिन दिया गया था। वैसे आप सबके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और रिक्वेस्ट भी आ रही है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, लेकिन अपना जो ये प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट अवर नहीं है, वो आप 11 से 1 में 1 बजे भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। और हम आज ज़्यादातर जो गाने हैं वो आनंद बख्शी साहब के प्ले कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। FM रेनबो और हम सब की ओर से उन्हें एक बार प्रणाम करते हैं। और एक गाना जो मतलब कहते हैं ना कि एक लिरिसिस्ट है, उनको आप एक सिचुएशन देते हैं और फिर उस पर वो गाना तुरंत लिख देते हैं। कई बार लिरिसिस्ट पहले लिखते हैं और कई बार आप उनको ट्यून दे देते हैं और उसके बाद वो ट्यून के ऊपर लिखते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, लेकिन लिरिसिस्ट है भाई। तो किशोर कुमार की आवाज़ में एक ऐसा ही खूबसूरत सा गाना है जो इन्होंने अलग अलग तरीके के गाने लिखे हैं वैसा वाला, तो बस एक सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत ही प्यारा गाना है। सुनते रहिए मेरे साथ RJ अवनी के साथ ओनली ऑन FM रेनबो।

फिर भी मेरा मन प्यासा क्या गाना बनाया है। और सुनते सुनते जैसे मैं आपको बताने जाऊं तो भूपाली जो राग है वो सबको पता है, मतलब सिंपल सा जो राग है, पांच स्वर है। भूपाली में जो ग है और ध है उसको आप कोमल कर दो, यानी कि पियानो बजाते हो तो आप उसको फ्लैट बजाओ, सा सा रे ग प ध सा, तो सा रे ग। वैसे शुद्ध क्या होता है, सा रे

द जो है उसको आप कोमल कर देते हो तो राग भूपाली से हो जाता है शिवरंजनी। और ये जो आपने गाना सुना वो हो गया शिवरंजनी राग में गाना, कितना खूबसूरत बनाया है और कंपोज किया है आर डी बर्मन साहब किन्ने, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, किशोर कुमार का गाया हुआ, महबूबा फिल्म से आपने ये गाना सुना। और इस फिल्म के बारे में बताने जाऊं तो हाल ही में इस मूवी ने अपने रिलीज के भी 50 साल पूरे किए। राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी की मुख्य भूमिका वाली जो महबूबा फिल्म थी वो 19 जुलाई 1976 को रिलीज हुई थी। शक्ति सामंता द्वारा निर्देशित ये फिल्म पुनर्जन्म के विषय पर आधारित थी। तो ये हमें बताया प्रणव शिंदे जी ने, थैंक यू सो मच सर। और वैसे तो लगता है कि गाने सुनते रहे प्रोग्राम चलता ही रहे, लेकिन 9:55 होने को है तो एक और प्यारा सा गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वैसे अभी रात तो नहीं है लेकिन ये गाना हम सबको पसंद है, तो चलिए इस बहुत ही खूबसूरत बढ़िया गाने को हम सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अवनी भट्ट।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, अभी के मुख्य समाचार। भारत ने यूक्रेन के

में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी थी। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा विस्तार से हुई। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। समाचार में आगे, भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 आयु के लोगों के लिए एक स्वीकृत और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपियन संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। समाचार के अंत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 2 की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय है। अभी के मुख्य समाचार यहां पर समाप्त हुए। धन्यवाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वैसे आज ट्यूसडे है, 21 जुलाई है, और जब भी हम नमस्ते भारत में मिलते हैं तो हम बात करते हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, कुदरती संपत्ति है यहाँ के, मतलब अपने कंट्री के जो सितारे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी हम याद करते हैं। वैसे भी आज हम याद करने जा रहे हैं, पहले आपको बता दूँ कि उमाशंकर जोशी जो साहित्य कवि है उनका भी आज जन्मदिन है। गुजराती साहित्य में कविता, निबंध, आलोचना और नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने। उन्हें निषिद्ध काव्य संग्रह गंगोत्री, महाप्रस्थान और अभिज्ञा उनकी प्रमुख कृतियां जो है वो रही। उन्हें कविनी श्रद्धा, मतलब गुजराती में था कविनी श्रद्धा नामक आलोचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। फिर हम याद करेंगे, याद तो नहीं लेकिन आज उनका जन्मदिन है, उमाशंकर जोशी जी को हम आज याद करते हैं एफएम रेनबो और उनकी ओर से, हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जन्मदिन है हमारे मतलब महान पूर्व क्रिकेटर और प्रशासक यानी कि चंदू बोर्डे जी का। 1958 से 1969 के बीच उन्होंने भारतीय टीम के लिए 55 टेस्ट मैच खेली थी। काफ़ी लोगों को मालूम होगा उनका नाम चंदू बोर्डे। भारतीय क्रिकेट और खेल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। चंदू बोर्डे जी को हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आज अभी हम बात करने वाले हैं जाने माने गीतकार आनंद बख्शी साहब के बारे में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, जन्मतिथि है एफएम रेनबो, और हम सब उनके चाहने वालों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और कार्यक्रम भी वैसे हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है, तो इन्होंने अलग अलग तरीके के मतलब हर टाइप के जो गाने हैं वो लिखे हैं, और भारत पे ही एक और गाना जो है खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना जो हमने सुना है, मैं अभी आपको सुनवाने जा रही हूँ।

ये सुपर डुपर हिट जो गाना है हमने कितनी बार सुना है, बहुत बार। इस गाने के लिए आनंद बख्शी साहब को फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। और कहते हैं ना, हिंदी सिनेमा जगत में अगर ये इंसान ना होते तो शायद कई संगीतकार, गायक और अभिनेता आज इतने प्रसिद्ध ना होते। इनके लिखे गाने गाकर ही किशोर कुमार सरीखी गायकों ने अपनी पहचान बनाई। इन्हीं के गीतों ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को सुपरस्टार बनाया। ये गीतकार है आनंद बख्शी साहब। जैसे कि अभी गाना सुना, अभी दूसरे दो गाने, एक आदमी मुसाफिर है, ये गाने के लिए भी उनको फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था। और दूसरे जो दो गाने हैं वो भी मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। ताल फिल्म का इश्क बिना, इस गाने के लिए भी उनको अवार्ड दिया गया था। वैसे तो आप मानेंगे नहीं, उनको 40 नॉमिनेशंस मिले हैं फिल्मफेयर अवार्ड में, उसमें से उनको 4 गाने में फिल्मफेयर अवार्ड मिला है। चलिए इस गाने को सुनते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

को गायक बनना था, जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया उनको बता दूं कि अपना प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते भारत एफएम रेनबो पे, और आज हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब के बारे में। आज उनका जन्मदिन है। वैसे यूं तो आनंद बख्शी साहब को गायक बनना था, लेकिन उनकी किस्मत ने असली रंग दिखाया गीतकार की भूमिका में। चार दशकों से अधिक समय की कहते ना अपनी कारकर्दगी में कई सुपरहिट गाने देने वाले हरफन मौला आनंद बख्शी साहब ने कई सितारों, निर्देशकों और संगीतकारों की किस्मत चमकाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने पूछा चांद से, फिर कुछ गाने तो हम आज अभी बजा नहीं पाए, जैसे चिंगारी कोई भड़के, फिर तुझे देखा तो ये जाना, सनम तक के बेहतरीन गाने उन्होंने लिखे हैं। अपने फिल्मी करियर में मेरे ख्याल से 4000 से अधिक गीतों की उन्होंने रचना की, और ऐसा भी सुना है कि एक फिल्म में उन्होंने गाना भी गाया है और एक बार उन्होंने एक्ट भी की है। तो मतलब क्या कलाकार थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा आऊंगा यहाँ पे तो या तो गीतकार बनूंगा, या तो गायक बनूंगा, या तो संगीतकार बनूंगा। हमें मतलब बहुत सारी इंस्पिरेशन उनसे मिलती है। एक और प्यारा सा जो गाना है वो हम सबका फेवरेट है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में हम सुनना चाहेंगे। ये गाना भी उन्होंने लिखा है, और अभी जो तेरे मेरे बीच में हमने सुना उस गाने के लिए भी उनको फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: ताल से ताल मिला। वैसे तो मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, आप तो घर पे होंगे और अगर या तो बाहर होंगे, बारिश आ रही है, अभी शायद आ रही है ना, 2-3 दिन से माहौल बहुत अच्छा है और उसमें जब हम ऐसा गाना सुनते हैं ताल से ताल मिला तो ऐसा लगता है कि हम कहीं महाबलेश्वर और उत्तराखंड चले गए हैं। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं आ रही है, हमने बारिश को बोल दिया है कि आपके उधर भी आए। हमारे लिसनर्स हमें बोल रहे हैं कि हमारे उधर बारिश नहीं है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द आ जाएगी। आनंद बख्शी साहब के बारे में बताने जाऊं तो 4000 से ज़्यादा गानों की रचना करने के बावजूद भी वे हर नए गीत में नया रंग भर देते थे। उनका छोटा सा परिचय दे दूं तो 21 जुलाई 1920 में रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ और महज 10 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया था और भारत में उनका जो परिवार है लखनऊ आया था और फिर लखनऊ छोड़ के मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचकर नेवी में क्रेडिट के पद पर 2 वर्षों तक उन्होंने काम की और बाद में सेना में भी नौकरी की और उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वे फिल्मों में अपना भाग्य आजमाएं और उन्होंने वही किया। सबसे पहले भगवान दादा से, मतलब उनकी फिल्म में बड़ा आदमी के लिए उन्होंने, भगवान दादा ने उनको बोला कि आप इसमें गाना लिखो। तो ऐसी बहुत सारी बातें तो कर रही हैं लेकिन 10:45 हो चुकी है और बहुत सारे गाने भी आपको सुनाने हैं। चलिए अगला गाना सुनते हैं उदित नारायण और कविता सुब्रमण्यम की आवाज में। जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो के संग। एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं और उसके बाद ये गाना सुनते हैं।
1: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वैसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन कहते हैं ना समय अपने पास कम है, 10:51 होने को है, और आज हमने आनंद बख्शी साहब के बारे में बात की। उनका कहना था कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सबका अपनी ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए। अगर किसी इंसान का ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो तो उसके काम या उसके बर्ताव को दिशा देने वाली कोई प्रेरणा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है कलाकार बनना, और इसे पूरा करने के लिए मैं फिल्म, रेडियो या थिएटर में जाऊंगा। मैं गायक, संगीतकार, निर्देशक, जो मुमकिन होगा वो बनूंगा। आज हमने मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब को याद किया FM रेनबो, और हम सब की ओर से उन्हें एक बार वापस श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और हमारे साथ हमारे लिसनर्स, कुछ मैं भूल गई थी मतलब नाम लेना, हम अपना जो प्रोग्राम है उसमें एकदम इन्वॉल्व हो गए थे, तो डॉक्टर अंजू जी है, फिर अजय सखारे जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर वैद्य ही, मनीष जी कांदीवली से, शुभदा जी, और बाबा दादर से मनीष पाटिल जी, पालघर से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और भी हमारे जो लिसनर्स हैं उनका तो है ही, क्योंकि वो मॉर्निंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और बहुत सारे गाने हैं आनंद बख्शी साहब के, आज पूरे दिन आप सुनते रहिएगा। और मैं बस क्या कहूँगी, अभी इतने सारे जो भी उनको गाने दिए वो उन्होंने लिखे, तो मैं भी आपको कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और अच्छा तो हम चलते हैं।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चला है 11:24। आइए आपको इस घंटे की ताज़ातरीन खबरों की जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और साझा विजन 2035 को आगे बढ़ाने के लिए बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कई सामानों पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा दिया है। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि यह कदम अमेरिकी उत्पादों के प्रति कनाडा के भेदभावपूर्ण व्यवहार के जवाब में उठाया गया है। बयान में बताया गया

ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों से मंजूरी मिल चुकी है। हॉकी में FIH यूथ 5 एस एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान में मस्कट में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हरा दिया। वहीं पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। ये टूर्नामेंट FIH यूथ हॉकी 5 एस विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर भी है। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7 धरती पर। आप चाहे जहां भी हो ऐप के माध्यम से आप हमें लगातार सुन सकते हैं। कार्यक्रम ब्रेक फ्री लेकर हाजिर है आपकी दोस्त माला। बारिश सिर्फ आसमान में नहीं बरसती, कभी किसी कविता के पन्नों से टपकती है, कभी किसी खत की स्याही में भीग जाती है और कभी किसी की याद बनकर आंखों तक चली आती है। तो आज ब्रेक फ्री में बात करेंगे बारिश की और आप भी हमें बता सकते हैं कि बारिश की सबसे खूबसूरत याद आपकी क्या है। किसी किताब का कोई पन्ना, किसी कविता की कोई पंक्ति या किसी का कोई साथ, क्योंकि कुछ बारिशें छतरी से नहीं शब्दों से बचाई जाती हैं।

तो वैसे पहली बारिश तो ये नहीं है और पहला मौका भी नहीं है कि हम आपसे मिलने आए हैं, लेकिन जब भी हम आपसे मिलते हैं तो वो पहला ही मौका हो जाता है मुलाकात का, क्योंकि आप हमें दिल से याद करते हैं, इसलिए हम चले आते हैं मिलने के लिए आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। कार्यक्रम ब्रेक फ्री साथ है आपके, आपकी दोस्त माला, दीपा पालकर भी हमारे साथ हैं और वो कह रही हैं कि बारिश की याद, बचपन में मैं हमेशा मेरी मम्मी और डैडी के साथ बारिश होती थी ना तब घर के सामने फूलों के गार्डन में जाती थी और बहुत भीगती थी और घर आने के बाद आइसक्रीम खाती थी। तो आपको कभी जुकाम नहीं होता था दीपा जी इतनी बारिश में भीगने के बाद आइसक्रीम भी खाने के बाद? लेकिन आपने लिखा है कि आप बीमार भी नहीं हुए, तो भाई आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये मैसेज हमारे पास आया है अंजू का अंधेरी ईस्ट से और वो कह रही है कि 26 की बारिश आज भी याद है मुझे, ड्यूटी पर थी और मॉर्निंग से लगातार बारिश हो रही थी और 12 बजे मैसेज आया कि ट्रेन से ट्रेवल करने वाले लोगों को छोड़ दिया जा रहा है नौकरी से, जाइए आप अपने घर क्योंकि पानी जो है वो भर गया है। और इमीडिएटली जब रिलीव किया गया तो मैं फटाफट अपने घर के लिए निकल पड़ी। वहीं फिरोज़सिकंदपुरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और धनंजय नवी मुंबई से हमें सुन रहे हैं और साथ ही साथ फिरोज जी कह रहे हैं कि कांदा भाजी जो है वो खाते हैं। और इसके अलावा जो है ये मैसेज हमारे पास बाबा का दादर से आया है, पंकज महोड, ओंकार काटकर, प्रमोद चिंचोलकर, स्नेहा वर्ली से है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए। नंबर नोट कीजिए 8657661071। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 MHz आप सुन रहे हैं और ये गाना बादलों के गरजने पर सीधे FM रेनबो के स्टूडियो से।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वैसे जहां जहां बारिश हो रही है या होने वाली है या मौसम बन गया है, उस बारिश में आज भीगने की कोशिश मत कीजिए। आज कोशिश कीजिए कि आप उस बारिश को पढ़ पाए, उससे कुछ सीख पाए। वैसे गुलजार साहब ने कहा है कि बारिश की बूंदों का कोई रंग नहीं होता, फिर भी ये हर रंग को और गहरा कर देती है। और जब बारिश होती है ना, तो हमारी जिंदगी में सभी रंग जो है वो निखर कर बाहर चले आते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में, जरूर बताइए। नंबर है 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071, 8657661071,

0: वैसे बारिशें दिल तो भर ही देती हैं, लेकिन आंख में पानी नहीं भरना चाहिए। बारिश का पानी भले ही घर में चला आए। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम, ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है प्रणव शिंदे की तरफ से। बारिश की बूंदें हमारे जीवन में नई उम्मीद, खुशहाली और संजीवनी लेकर आती हैं। तपती गर्मी से झुलसती धरती को नया जीवन देने और इंसानी जज्बातों को जगाने में इन बूंदों का बहुत महत्व होता है। और प्रकाश शिंदे भी साथ में सुन रहे हैं हमें। ये मैसेज दोनों लोगों ने हमें मिलकर भेजा है। अब जो अगला मैसेज वो हमारे पास आया है, वो जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून का है। सुन रहे हैं और गाने उन्हें पसंद आ रहे हैं। अशोक पाटिल वर्ली से, वो कह रहे हैं कि पहले बारिश की धारा जमीन पर पड़ती है, जो मिट्टी की सुगंध आती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, और प्रोग्राम आपका जो है वो हमें पसंद आ रहा है। अशोक पाटिल के साथ राजेश मोरे वर्ली कोलीवाड़ा से हमें सुन रहे हैं। स्नेहा वर्ली से ही जुड़ी हुई है और इंजॉय कर रही है कार्यक्रम। साथ ही साथ ओंकार काटकर जो है वो भीगी हुई सड़क, बारिश की सूंधी महक और ठंडी हवा, बीते पलों जैसे बचपन में कागज की नावें चलाना, पहली बारिश में भीगना या किसी अपने के साथ बिताई गई शाम की यादों को जो है बारिशें ताजा कर देती हैं। और विजेंद्र खटोल अकोला से हमें सुन रहे हैं, कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अजय साखरे इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं और ये मैसेज हमारे पास प्रमोद चिंचोलकर का है। वो कह रहे हैं कि अकोला में भी बारिश शुरू हो गई, हम पानी में भीग रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। गाने भी साथ साथ सुन रहे हैं राकेश माथुर, बारिश की बातें और गाने उन्हें अच्छे लग रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से दुर्गेश मरकाम, बारिश के गीतों का जो प्रसारण है वो उन्हें अच्छा लग रहा है। सुख शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी हमने सुन रहे हैं और एक कहानी भी उन्होंने हमें लिखी है बारिशों से जुड़ी। पंकज महोड भी सुन रहे हैं अमरावती से। विनोद मकवाना दहिसर से जुड़े हुए हैं। बारिश के सबसे ज्यादा यादें जो है होती हैं वो कह रहे हैं कि बचपन से होती हैं, रेनकोट पहनकर स्कूल जाना और आते समय भीग जाना, पानी में कागज की नाव चलाना और मम्मी से कांदा भजिया बनवाना, बहुत सारी यादें हैं इनकी। तो विनोद मकवाना दहिसर से हमें लिख रहे हैं। राजेंद्र जुठानी भी चाय का प्याला उन्होंने हम तक पहुंचाया है। दीपा पालकर भी जुड़ी हुई हैं। प्रणव शिंदे ने भी हमसे बात की। राम प्रजापति भी सुन रहे हैं वसई से। बारिश में हमको बहुत मजा आता है। और सुनील स्वप्निल जोशी रत्नागिरी से सुन रहे हैं, कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। तो भाई इसी तरह पसंद करते रहिए, अगला गाना हम आपको सुनाएं। इससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

तो भाई बारिश के मौसम में जो मीठा पान है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है, खाएं तो बहुत मज़ा आता है, मौसम का भी मज़ा और ज़बान का भी जायका। वैसे जो बीत गई सो बात गई, और बारिश भी यही सिखाती है कि हर बादल हमेशा नहीं ठहरता। वर्षा ऋतु ऋतु सिर्फ एक बारिश की बूंदे ही नहीं है, मन की संवेदनाएं भी हमारे बन जाती हैं। वैसे बशीर बद्र साहब ने कहा है कि दो परिंदों को अभी शोक हवा में उड़ने दो, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। बारिश अक्सर हमें उसी बचपन में लौटा देती है। बारिश का पानी कुछ देर में सूख जाता है, लेकिन बारिश में पड़ी हुई कविता जिंदगी भर साथ रहती है। आज जब बारिश हो तो सिर्फ खिड़की मत खोलिएगा, एक किताब का पन्ना भी खोल लीजिएगा और कुछ उससे पढ़ लीजिएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। राकेश माथुर ने लिखा है कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। बरसात की भीगी रातों में फिर कोई सुहानी याद आई, कुछ अपना जमाना याद आया, कुछ उनकी कहानी याद आई। और ये मैसेज जो हमारे पास आया है शुभ लक्ष्मी मस्तकार का, वो कह रहे हैं कि बारिश के बारे में एक खूबसूरत सी बात यह है कि बचपन में मुझे बारिश में भीगना बहुत इंजॉय उससे मैं करता था। और एक दिन ज़ोरदार बारिश के दिन था और हमारे स्कूल की छुट्टी जो थी वो हमें मिल गई बारिश की वजह से, और मैं घर में जाती थी लेकिन मैं बारिश में भीग गई, घर तो गई लेकिन

में पूरा भीग गई, और इस बारिश में भीगने का जो मज़ा है वो आज तक मैं मिस करती हूँ। ये लिखा है शुभ लक्ष्मी मस्तकार ने। और पंकज मोड़ कह रहे हैं कि उनके यहाँ बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान में जो बादल छाए हैं उससे गर्मी से उन्हें राहत मिल रही है। और विजेंद्र घटोल का कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। राम प्रजापति वसई से सुन रहे हैं, बाबा दादर से। और मौसम जो है बारिश का, वो कह रहे हैं कि साल भर नहीं जाना चाहिए, वो लगातार ऐसे ही बना रहना चाहिए, लेकिन वक्त है, आता है जाता है, मौसम बदलते रहते हैं, तो भाई उन्हें इंजॉय करते रहिए और बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, क्योंकि कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है लगातार, आपके साथ बनी हुई है आपकी दोस्त माला।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुनते रहते हैं। 11:55 और ठीक 14 सेकंड हो चले हैं और कार्यक्रम ब्रेक फ्री जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। फिरोज सिगनपुरिया और उनके साथी जो उनके ग्रुप के साथी हैं उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है तो वो हम जरूर करेंगे जाते जाते पूरी और आपसे उम्मीद करेंगे कि बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे, तला हुआ खाना थोड़ा कम खाएंगे ताकि वज़न भी ना बढ़े और हेल्थ भी अच्छी रहे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल खाने से। तो कोशिश कीजिए कि बारिशों के मौसम का जो है मज़ा लीजिए और एफएम रेनबो का मज़ा लीजिए, खूबसूरत नगमों का मज़ा लीजिए, लेकिन खाना थोड़ा हेल्दी ही खाइए, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए। इस गाने के बाद होंगे समाचार और समाचार के बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ेगी आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चला है 12:20। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। एनडीए की आज संसद भवन के GMC बाल योगी ऑडिटोरियम में संसदीय दल की बैठक हुई। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। सिक्किम के नामची जिले में समरडुंग में NHPC तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान चल रहा है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP ने बताया कि बचाव दल ने अब तक 8 शव बरामद किए हैं। आशंका है कि सुरंग के अंदर लगभग 20 लोग फंसे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे पर राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय बैंगलोर जोन राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA द्वारा दर्ज FIR के आधार पर 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार ये मामला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बैंगलोर स्थित एक अन्य व्यक्ति शामिल है। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोपहर हो चली है दोस्तों, 12 बज चुके हैं, 12 बजकर 2 मिनट और ठीक 28 सेकेंड। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 MHz पर आप सुन

बेहद छोटे इशारों से बड़ा बदलाव दिखा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक मुस्कान या एक धन्यवाद या किसी की मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या सच में इतनी छोटी चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे म्यूजिक कैफे में, लेकिन जो है आप भी कर सकते हैं इस विषय में हमसे बात। तो ध्यान रखिएगा और सोचकर बताइएगा कि आखिरी बार आपने किसी को बिना वजह कब मुस्कुराकर देखा था और कब थैंक यू कहा था और कब किसी की मदद की थी, क्योंकि ये जो सोच है वो सोचने का तरीका बदलती है। म्यूजिक कैफे साथ है आपके आपकी दोस्त माला और पहला गाना आ रहा है जैस्मिन सैंडलाज की आवाज में। एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

0: रिस्पांस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम उस ताकत की बात करेंगे जो देखने में तो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन उसका असर जो है वो बहुत बड़ा होता है। और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं कि इसका मतलब है कि असर सच में उस छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले जो है मुझे एक कहानी मैंने पढ़ी कि भाई कहानी ये थी कि मैं रोज़ अपने ऑफिस के गार्ड अंकल को देखकर मुस्कुरा देती थी और एक दिन उन्होंने कहा कि बिटिया आपकी मुस्कान से दिन अच्छा हो जाता है। और उस दिन से उस कहानी के हिसाब से एहसास हुआ कि भाई अगर हम खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी मुस्कुराएं तो खुशियाँ बन सकती हैं। सोचिए एक मुस्कान, एक नज़र, एक छोटी सी मदद किसी का पूरा दिन बदल सकती है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? अगर आपकी जिंदगी में भी एक छोटी सी वजह जो है किसी ने बनी हो और उससे फर्क लाया हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है 8657661071 यानी कि 8657661071। और दीपा पालकर जो है वो लिख रही है कि आज सुबह मेरे रिश्तेदार के साथ मैंने मुस्कुराया और उसके साथ वो भी खुश हो गए और मैं भी, और दिन बन गया। बहुत अच्छी बात है। अंजू ने अंधेरी इससे लिखा है कि भाई मैं कोशिश करती हूँ लोगों को फाइनेंशियली, मेडिकली काउंसलिंग एडवाइस देने की ताकि वो इससे किसी को फ़ायदा मिल सके। प्रमोद चिंचलकर तो कह रहे हैं कि भाई हम तो हरदम हंसते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं, पैसे से हो या मोहब्बत से, हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और विनोद मकवाना दहीसर से कह रहे हैं कि मेरा मित्र और मैं दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए नेशनल पार्क जाते हैं हर रोज़ और वहाँ पर जो रैंडम लोग दिखते हैं उन्हें देखकर उनके साथ स्माइल गुड मॉर्निंग करते हैं और बोलते हैं उनसे, और गुड मॉर्निंग के बाद जब वो मुस्कुराते हैं तो दिन उनका भी बन जाता है और हमारा भी। और राम प्रजापति वसई से

अरे मैंने आज सुबह अपनी वाइफ का जो चेहरा देखा और उसके बाद मैं मुस्कुराता ही जा रहा हूँ सुबह से। और भी बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले ये गाना मुस्कुराने के लिए लगता है काफ़ी है।

0: के।
1: तो भाई कभी कभी ऐसे ही कुछ सारे काम कर लेने चाहिए, कभी किसी को मुस्कुराने का मौका दे देना चाहिए, किसी को देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वैसे आप सोच रहे होंगे मुस्कुराने या मदद करने में क्या सच में फर्क पड़ता है। दरअसल जब हम मुस्कुराते हैं या किसी की मदद करते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन तनाव को कम कर देते हैं और खुशी बढ़ा देते हैं और हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खुशियां बांटना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक दवा के जैसा है, एक मानसिक व्यायाम इसे कह सकते हैं। तो क्यों ना आज से हम अपने दिमाग को इन खुशियों से भर दें जो हम दूसरों को बांटते हैं और हमें खुद भी वो हासिल हो जाती हैं, और अपनी और उसकी जिसे हम खुशी देते हैं उसकी एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं।

तो भाई अब ये आपके ऊपर है कि आपको मोहब्बतें बनकर बरसना है, इश्क बनकर बरसना है, या फिर खुशियां बनकर किसी पर बरसना है, पर बरसिए जरूर ताकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही पाए। राजेंद्र चुटानी कांदीवली वेस्ट से हमारे साथ जुड़ गए और वो ये कह रहे हैं कि भाई माला जी, हेल्दी फूड जो है वो तो खाना ही चाहिए, लेकिन हेल्दी जो बातें आप कर रही हैं वो हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएंगी। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कार्यक्रम। विजेंद्र घटोल अकोला से कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें पसंद भी आ रहा है। धनंजय मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है पंकज मोहड़ का, उन्हें भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है। प्रमोद चिंचोलकर भी कार्यक्रम सुन रहे हैं और एक गाने की फरमाइश भी उन्होंने हम तक पहुंचाई है, तो हम ज़रूर ये फरमाइश पूरी करेंगे। शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी कह रहे हैं कि भाई कह रही है कि मेरी फर्स्ट और लास्ट हंसी एक दोस्त के साथ हुई और उसके ही साथ में मेरी शादी भी हो गई। वाह क्या बात है, आपने मोहब्बतें बरसा ही दी आखिर। और प्रमोद चिंचोलकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो, आपकी दोस्त माला बनी रहेगी आपके साथ। 12:30 पर आप हमें सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम जो आप रोज सुनते हैं उमंग, और उसके बाद 1 होंगे मराठी में समाचार और एक बार फिर 1:05 पर जुड़ जाएगी आपके साथ आपकी दोस्त माला। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि 1:05 पर आपकी सभी फरमाइशें हम पूरी करने आ रहे हैं। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए, चिल्लर पार्टी फिल्म का ये गाना है, अमित त्रिवेदी, अरमान मलिक और तन्मय की आवाज़ में, और बने रहिए एफएम रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। आइए सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
1: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
1: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला
2: जी।
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
1: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन

0: अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांकेन।
2: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
3: यमन भैया कहाँ हो भैया?
4: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
4: अच्छा, क्या लिखा है?
3: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
5: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था।

0: उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है, टिकट भी भेज दिए हैं।
1: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
2: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
3: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
0: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चाउतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
6: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
5: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
5: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है, जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
5: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
5: वो इसलिए

0: आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है,
2: तो हम भी चले।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: क्लैप एंड स्माइल आरबीसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत,
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 1:05 और ठीक 42 सेकंड। कार्यक्रम हिट एंड हॉट लेकर हाजिर है वादे के अनुसार आपकी दोस्त माला। तो जल्दी से हो जाइए तैयार, नंबर कीजिए नोट 8657661071 8657661071। इस नंबर पर आप हमें अपना कोई मैसेज या फिर कोई पसंद का गाना भेजना चाहते हैं तो कार्यक्रम हिट एंड हॉट में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
2: मैं कर रही थी किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: तो भाई कार्यक्रम हिट एंड हॉट का पहला गाना ही बहुत ही हिट और हॉट गाना है जो हमने आपके लिए ऑलरेडी प्ले कर दिया। और आज की जो पहली कहानी है वो प्रकाश शिंदे ने हम तक पहुंचाई है। नेशनल बी समवन डे जो है आज मनाया जाता है 21 जुलाई को दुनिया भर में, तो हम तो हमेशा आपके साथ रहते हैं तो फिर ये दिन तो हमारे लिए बिल्कुल सही बैठता है। और आप भी हमारे साथ रहते हैं तो आप पर भी पूरे तरीके से फिट रहता है क्योंकि आप बने रहते हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM के साथ, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। तो अब बारी है प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे ने जो कहानी हम तक पहुंचाई है उसकी। एक छोटे से गांव में देव नाम का एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो कोई बड़ी नौकरी थी और ना बहुत सारी दौलत थी, लेकिन उसके पास एक आदत थी, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब देव सुबह की सैर पर निकला तो उसने देखा कि रास्ते में बहुत से कंकड़ और पत्थर बिखरे हुए हैं। उसे डर लगा कि कहीं इनसे किसी राहगीर को चोट ना लग जाए। उसने बिना एक पल गवाए सभी पत्थरों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। तभी वहां से एक अमीर व्यापारी गुजरा और उसने देव से पूछा, तुम ये बेकार का काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे कोई पैसा तो मिलने वाला नहीं है। तो देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे इसका भले ही कोई पैसा ना मिले, लेकिन मेरे इन चंद सेकंड के काम से किसी राहगीर के पैर में कांटा चुभने से बच जाएगा। कुछ महीने बीत गए, अचानक गांव में एक तूफान आया और देव का घर पूरी तरह से टूट गया। उसके पास सर छिपाने की जगह नहीं थी। वहां गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वो उदास बैठ गया। तभी वहां से बहुत सारे लोग गुजरे। ये वही लोग थे जिनकी देव ने कभी ना कभी मदद की थी। किसी ने उसके लिए खाना लाया, किसी ने मिलकर उसका घर फिर से बनाने की जिम्मेदारी ले ली। व्यापारी जो ये सब देख रहा था देव के पास आया और बोला, अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हो तो वही रोशनी लौट कर तुम्हारी मुश्किलों के समय तुम्हारा रास्ता रोशन करती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे इरादे की ज़रूरत होती है। आप जो अच्छाई दुनिया में बांट देते हैं वो किसी ना किसी रूप में आपके पास ज़रूर आ जाती है। तो खुद को साबित करने की बजाय दूसरों के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बने जो उनका सहारा बन सके। तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी हम तक पहुँचाई प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे ने। अब उन्हीं की पसंद का ये गाना राजू चाचा फिल्म से हम आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। 1:15 और ठीक 45 सेकंड माला बनी हुई है आपके साथ कार्यक्रम हिट एंड हॉट में।
1: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है, हाँ यही तो है सब निशानियां।

आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिन जिन गानों की फरमाइश आप हम तक पहुंचाएं वो गाने हम जरूर आपके लिए प्ले करते हैं। और राम प्रजापति जो है वसई से इन्होंने हमें मैसेज किया है और वो भी एक गाना सुनना चाहते हैं जो कि हम सबका पसंदीदा गाना है, साजन फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं। तो भाई राम प्रजापति जी, आपके लिए गाना हम जरूर प्ले करेंगे और साथ ही साथ प्रमोद चिंचोलकर की फरमाइश भी हम पूरी करेंगे क्योंकि वो सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ गाना मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन वो गाना हम न्यूज़ ब्रेक के बाद आपके लिए प्ले करेंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए साजन फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

तो भाई आप जुड़ गए एक बार फिर आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, कार्यक्रम हिट एंड हॉट लेकर हाजिर है आपकी दोस्त माला और प्रमोद चिंचोलकर का गाना जो उन्होंने हम तक पहुंचाया था हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

और राकेश माथुर ने तेरे घर के सामने फिल्म के टाइटल ट्रैक की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। वहीं फिरोज सिगिन पुरिया जो है यादों की बारात फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो ये दो गाने बैक टू बैक ओनली ऑन FM Rainbow 107.1 FM पर एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो कार्यक्रम हिट एंड हॉट चल रहा है और इतनी ज्यादा फरमाइशें हम तक पहुंची हैं कि हम सब तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जिन जिन की फरमाइश पूरी करेंगे उनके अलावा बाकी सभी लोगों के नाम लेना बनता है। फिलहाल हम दो गाने बजाएंगे जाते जाते बैक टू बैक, एक काजल कक्कड़ की फरमाइश पर और साथ ही साथ विजेंद्र घटोल की फरमाइश पर, और ओंकार काटकर का गाना फिल्म रंग से हम जरूर बजाएंगे। इसके अलावा जो मैसेजेस हम तक पहुंचे हैं उनके नाम लेना बनता है। प्रदीप अनंत कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभ लक्ष्मी मस्तकार सुन रही हैं, प्रणव शिंदे प्रकाश शिंदे सुन रहे हैं हमें, और ये मैसेज है प्रथमेश डोंगरे का मुंबई विक्रोली ईस्ट से। अभिजीत गावनकर भी हमें सुन रहे हैं, साथ में सरिता प्रणीता सिद्धांत प्रिंस एकांश और लाडला टुकटुक गावनकर भी हमें बड़े प्यार से सुन रहे हैं। मुकेश कश्यप के साथ शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह हमें लगातार सुन रहे हैं। ये मैसेज है अनिल कामले का हिंगोली से, वो हमें सुन रहे हैं। दीपा पालकर तो हमारे साथ जुड़ी ही हुई हैं सुबह से। गणेश भी जो गणेश मंगर मुंगी पैठण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन कुमार मानपुर गया बिहार से, गुरमीत सिंह मीता सिंह हमें लगातार नई दिल्ली स्टेशन से सुन रही है साउथ एक्सटेंशन से, और पंकज महोड़ जो है वो सुन रहे हैं हमें लगातार, और राजेंद्र जुठानी, मीरा सिंह के साथ साथ ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका सिंह भी समस्तीपुर बिहार से हमें सुन रही हैं, संदीप कुमार भी जुड़े हुए, लालगिरी गोस्वामी, अजय साखरे और फिरोज सिगिनपुरिया तो जुड़े ही हुए हैं, जिनकी पसंद का गाना हमने आपके साथ बजाया था, अभी आपके लिए सुनाया था। तो अब हम आपको छोड़ जा

रहे हैं इन दो खूबसूरत नगमों के साथ, ओंकार काटकर और काजल कक्कड़ की फरमाइश, साथ ही साथ हमारे साथ विजेंद्र घटोल की भी फरमाइश है। ये मोहब्बतें फिल्म का गाना है दूसरा, और इसके साथ ही अपनी दोस्त माला को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि जल्द ही होगी आपसे मुलाकात आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 MHz पर।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district. Rescue operation underway. Prime Minister Shah Sikkim, Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
3: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
4: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है और भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समुद्र में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
7: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: चार धाम यात्रा का संचालन

0: जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मी महेश कोठारे। मधुर मराठी गाणी आणि छान छान माहितीसाठी आणि मनोरंजनासाठी नक्की ऐका आणि मजेत रहा आकाशवाणी FM रेनबो वाहिनी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार रसिक श्रोते हो, मी शिवाजी साटम। आपण ऐकत आहात 107.1 FM रेनबो वाहिनी, जुन्या नव्या मराठी गाण्यांची आणि गप्पांची मेजवानी।
2: रसिक हो, सप्तरंगी साथ हा कार्यक्रम सुरू आहे आणि तुमचा आरजे मित्र गोपी भोसले आज तुमच्या बरोबर आहे। अमर सिंग चमकीला यांच्याबद्दल एक किस्सा ऐकिवात आहे। प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी ही चमकीलांची फॅन होती। तिला हिंदी चित्रपटात चमकीलांबरोबर काम करायचं होतं, पण चमकीला यांनी नकार दिला होता। कारण ते गाण्यांच्या कार्यक्रमातून महिनाभरात जेवढे पैसे कमवायचे ना, तेवढे पैसे त्यांना चित्रपट करूनही मिळाले नसते। अल्पावधीतच भरपूर पैसा आणि प्रसिद्धी अमरसिंग चमकीलांना मिळाली होती। रसिका, आता वेळ झाली आजच्या सप्तरंगी साथ या कार्यक्रमात विराम घेण्याची। ठीक 3:58 तुम्ही मराठी ठळक बातम्या ऐकाल आणि त्यानंतर म्हणजेच 4 सांजेच्या पारी या कार्यक्रमात आपली भेट होईलच। ऐकत रहा आणि ऐकवत रहा मुंबई आकाशवाणीची FM रेनबो वाहिनी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ऐकूयात काही ठळक घडामोडी। नीट पेपर फुटी प्रकरणी नवी दिल्लीत विद्यार्थ्यांचं सुरू असलेलं आंदोलन, कार या आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेली कारवाई यासह इतर विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी गदारोळ केल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं। लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांची भेट घेत विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा करावी अशी मागणी केली। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या 6 खासदारांच्या शिवसेना प्रवेशाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे।

अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर से वाला गाना। 5:07 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम और आ गई हूँ मैं स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि वर्क सेटअप में या वर्क कल्चर में काफ़ी कॉमन होता है, और ये तब होता है जब हमारा जो डिपेंडेंसी होता है ये एक्सटर्नल फोर्सेस पे ज़्यादा होता है। एज इन जब आप कहीं बाहर जाते हैं मीटिंग्स के लिए या आपको किसी और के साथ डील करना पड़ता है, ये मेनली सेल्स या मार्केटिंग प्रोफाइल जिनके भी पास है, ये उन लोगों के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट होता है, क्योंकि आपका वर्क डिपेंड करता है दूसरों के अप्रूवल्स पर, दूसरों के कन्फर्मेशंस पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ डिफ़िकल्ट लोगों के आसपास घिर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप जो सल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं या कैसे डील करते हैं आप ऐसे डिफिकल्ट लोगों के साथ, ये आप मुझे बता सकते हैं। 8657661071 है हमारा नंबर। एंड नॉट जस्ट आई वुड से सेल्स मार्केटिंग, अगर आपकी लाइफ में कभी वर्क रिलेटेड आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट है, या आपका काम बार बार या तो डीले कर रहे हैं या तो रोक रहे हैं, तो आपने ऐसे सिचुएशन में कैसे डील किया ये मुझे जानना है। नंबर आपको पता है, मैंने बता दिया है, फिर से एक बार बता रही हूँ, 8657661071। एंड जब तक आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो अगला गाना है मैं प्ले करने वाली हूँ, जिगर सराया प्रिया सराया की आवाज़ में है ये गाना, दिस इज़ फ्रॉम द मूवी शुद्ध देसी रोमांस। और इसके बाद मोहित चौहान की आवाज़ में आप एक गाना सुनेंगे, वो गाना कौन सा है ये जानने के लिए ट्यून्ड इन रहना है आपको इसी रेडियो स्टेशन पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

5:20 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। पर कोई जिंदगी को लव कैसे करे जब कभी कभी वर्क फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और वो आपकी गलती के वजह से या आपके आई वुड से लापरवाही के वजह से नहीं होता है, काफ़ी बार एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट रहता है। और मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि जब आप किसी डिफिकल्ट पर्सन के रूबरू होते हैं, हो सकता है कोई मीटिंग में हो रहा हो वो चीज़ या फिर आपका काम रिलेटेड हो, तो आप उसे कैसे डील करते हैं। और दीपा पालकर का मैसेज आया है, कह रही है कि वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते ऑन डिफिकल्ट पीपल, डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो फिर एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर कंसल्ट करके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है वो। एंड मुझे लगता है काफ़ी सेंसिबल अप्रोच है, क्योंकि आप जितना एनर्जी वेस्ट करेंगे ऑन सच पीपल आपका उतना ही और दिमाग थोड़ा सा खराब होगा, थोड़ा सा और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम आपके काम पर और ज़्यादा असर होता है क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो जब ऐसे लोगों के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है तो मिनिमम से मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ही मुझे लगता है बेस्ट अप्रोच है इस चीज़ के लिए। पर अगर आपका कोई अलग तरीका है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हम नंबर है हमारा 8657661071 और जब तक आप मुझे मैसेज कर रहे हैं जो

अगला गाना है मैं प्ले करने वाली हूँ अजय और श्रेया घोषाल की आवाज में, ये गाना दिस इज धड़क का टाइटल ट्रैक, और इसके बाद विशाल डिडलानी, श्रेया घोषाल एंड अमानत अली खान की आवाज में आप सुनेंगे गाना। मूवी का नाम है दोस्ताना, गेस कर सकते हैं तो गेस कर दीजिए, अदरवाइज यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन FM रेनबो 107.1।

5:35 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। अलका याग्निक एंड शान की आवाज में आप सुन रहे थे कल हो ना हो से ये वाला गाना, और कल जरूर है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे डिफिकल्ट लोगों के बारे में जो कि मेक श्योर करते हैं कि आप आज क्या आप कल भी उसी वर्क में उलझे रहें, स्ट्रेस में उलझे रहें। और मैंने यही पूछा कि ऐसे लोगों से आप कैसे डील करते हैं एंड क्या करते हैं आप इन सच सिनेरियोस, और साथ ही साथ आप सबके सॉल्यूशंस के साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं जहां पर आप कुछ गाने रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इस आवर में तो बिल्कुल नहीं होता है, अगले आवर में भी नहीं होता है, रिक्वेस्ट होता है तो वो आखिरी आवर में होता है, तो आपकी रिक्वेस्ट आप तब तक संभाल के रख सकते हैं। फिलहाल तो जो मैसेजेस आ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू वर्क कल्चर और स्ट्रेस और डिफिकल्ट पीपल, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। प्रीति का मैसेज आया है हमको, प्रीति कह रही है कि जब वो ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रही होती है जो कि जानबूझ के काम उलझाने की कोशिश करते हैं तो वो चीजों को बहुत क्लियरली मेंशन कर देती हैं या मेंटेन रखती हैं कम्युनिकेशन, सो दैट अगर कुछ कंफ्यूजन होता भी है तो वो उनसे बच जाती है। एंड ये भी एक सेफ तरीका है टू एक्चुअली कैरी आउट थिंग्स, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, जब आप चीज़ों को बहुत स्पेसिफिकली मेल पर रखते हैं या कभी कभी मैसेजेस पे रखते हैं तो आपकी तरफ से तो वो काम पूरा यू नो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई सामने वाला आपके काम को उलझाने की कोशिश कर रहा है या डिले करने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट एक तरह का प्रूफ होता है आपके पास कि आप वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं जो कि काम को इजी करने की कोशिश कर रहे हैं या जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट ये अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए आपकी बेहतरी के लिए। और फिलहाल तो जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूँ, शंकर महादेवन की आवाज में है ये गाना एंड दिस इज़ फ्रॉम द मूवी वेकअप सिड। एंड हाई टाइम यू गाइज वेक अप व्हेन इट कम्स टू वर्क, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही गलत फायदा उठाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। बट फिलहाल तो जैसे मैंने कहा वेकअप सिड से गाना आ रहा है, आफ्टर दिस कौन सा गाना आ रहा है ये जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

5:52 हो रहे हैं, आप ट्यून है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। अभी अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में कुर्बान से वाला टाइटल ट्रैक। और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। शो को खत्म होने में कुछ 13 मिनट बाकी है, क्योंकि शो खत्म होता है 6:05 पर। उसके बाद आप सुनेंगे कुछ समाचार और उसके बाद हमारा शो अंदाजे में शुरू हो जाएगा। पर फिलहाल क्योंकि हमारा शो अभी भी चल रहा है, जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूँ। एंड मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था विद रिगार्ड्स टू वर्क कल्चर, और अभी भी आप सबके रिक्वेस्ट आ रहे हैं। मैं फिलहाल रिक्वेस्ट नहीं ले रही हूँ, तो अभी मुझे रिक्वेस्ट भेज के कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपसे कहूँगी तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिलहाल तो जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब दे सकते हैं आप ऑन 8657661071। और जो अगला गाना है प्ले करने वाली हूँ, सिद्धार्थ महादेवन एंड शिल्पा राव की आवाज़ में, गाना फ्रॉम द मूवी धूम 3। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैं ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैं याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

6:20 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 और राहत फतेह अली खान का वर्जन आपने सुना, मूवी का नाम था बत्ती गुल मीटर चालू। हमारा शो भी शुरू हो चुका है जिसका नाम है अंदाजे बयां। मेरा नाम है सोनम और हम प्ले करने वाले हैं इस आवर में कुछ गजलें, कुछ सूफी नगमे एंड हो सकता है थोड़े बहुत इंडी पॉप एल्बम के गाने भी फिलहाल। तो क्योंकि शो की शुरुआत हुई थी और ये गाना एक इस वर्जन में फिट हो रहा था तो मैंने ये गाना प्ले कर दिया। बट फिलहाल जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ इसे गाया है अली हैदर ने और इसके बाद आप सुनने वाले हैं रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में एक गाना। वो गाना कौन सा है ये जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा. आकाशवाणी FM रेनबो.
1: छह बजकर 55 मिनट हो रहे हैं. आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और अभी अभी आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज़ में ये वाला गाना. और हमारे शो को ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और इसके बाद हमारा शो शुरू हो जाएगा जिसका नाम है हम तुम. पर उसके बीच में होगा एक 10 मिनट का समाचार अपडेट और उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं प्ले करूँगी ऑन एयर. पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गाने आप रिक्वेस्ट करें वो उन मूवी से हों जो कि साल 2000 के बाद रिलीज़ हुई. एंड थोड़े फास्ट पेस नंबर्स, थोड़े डांस नंबर्स, आप ऐसे गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं. फिलहाल तो जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ. आशा भोसले जी की आवाज में है ये गाना एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी इजाजत. और इजाजत ले रही हूँ मैं अभी जरा देर के लिए ऑफ एयर जाने के लिए. पर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.
2: किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए. पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई. दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई. रूठ गए, नाराज हो गए, हाथ से अंगूठी उतारी, वापस कर दी. बाहों के कंगन उतारे और 7 फेरों समेत लौटा दिए. लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए उनका क्या होगा.

7:15 हो रहे हैं और आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। और अभी अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और लव जंजुआ की आवाज में ये गाना, एंड इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम चेतन कुमार। तो हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है शुरू हो चुका है, जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है हमको फ्रॉम ज्योति घटोल और दिस इज फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन। इसके साथ साथ जो बाकी के गाने हैं वो भी प्ले होने वाले हैं, यानी कि अजय सखारी की रिक्वेस्ट फ्रॉम द मूवी जब वी मेट एंड विठल मुंगासे की रिक्वेस्ट फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम, इसका भी गाना प्ले होने वाला है। और अगर आपको भी आपके पसंद के गाने सुनने हैं तो यू हैव टू लेट मी नो ऑन 8657661071।

7:30 हो रहे हैं और आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। और अभी अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम जावेद अली की आवाज में जब वी मेट से ये वाला ट्रैक। और जैसे मैंने कहा, इस ट्रैक की फरमाइश आई थी फ्रॉम अनिल सखारे। जो अगला रिक्वेस्ट है प्ले करने वाली हूँ, दीपा पालकर ने कुछ गानों की फरमाइश की है जिसमें से एक ही गाना प्ले होगा। एंड यही इज द सैड पार्ट, क्योंकि आप जितने भी गाने रिक्वेस्ट करें, इतने सारे रिक्वेस्ट होते हैं कि सबकी एक एक ही फरमाइशें पूरी हो सकती है। तो यस, आपका स्ट्रेस कम करें, मुझे बस एक ही गाना रिक्वेस्ट करें वही काफ़ी होगा। तो ये गाना प्ले हो रहा है फ्रॉम द मूवी बंटी और बबली, शंकर महादेवन, सौम्या राव और लॉय मेंडोंसा की आवाज़ में ये गाना। एंड आफ्टर दिस पंकज मोहोड़ की पसंद का गाना प्ले होने वाला है, बट उसके बीच में होगा एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक। एंड उसके बाद मैं आऊँगी फिर से ऑन एयर ये बताने कि आप कौन से गाने सुनने वाले हैं। हम तुम में, मेरा नाम है सोनम एंड आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
5: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच UCC विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
6: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
7: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच

0: एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
5: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
4: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister Dr. Jitendra Singh informed that the government accepted the demand of holding discussion over the matter. However, the Union Minister said that when the government's stand was conveyed to the Congress leader, Mr. Gandhi backtracked from his earlier stance and added more demands.
5: Then I told him, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. It's very unfortunate the leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this, particularly so when this morning itself Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible for the paper leakage episodes will go scot-free. Not only that, he went on to say that the severest punishment would be accorded to the persons who are found involved in this.
4: Later, senior Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav and other opposition party members were detained by Delhi police during the protest near Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Our correspondent has the details.
6: The proceedings of both the houses of parliament were marred by the repeated adjournments for the second consecutive day of the monsoon session. Both the houses were adjourned thrice following opposition.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आपको पता है कि सबसे अच्छी बातें जो है वो हमेशा धीरे से कही जाती हैं। बारिश कभी शोर मचा कर नहीं बरसती, बल्कि सुबह कभी आवाज़ देकर नहीं आती है। और हम ये भी जानते हैं कि मोहब्बत भी अक्सर खामोशी में ही अपना रास्ता बना लेती है। शायद इसी वजह से गज़लें जो हैं वो हमें इतनी प्यारी लगती हैं। इनमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, हर मिसरा जो है वो ठहर कर आता है और दिल में उतरने की इजाज़त आपसे खुद मांगता है। आज की दुनिया में हर किसी के पास बोलने का वक्त है, लेकिन सुनने का वक्त बहुत कम है। तो क्यों ना कुछ देर सिर्फ सुन लिया जाए, अपने दिल को, अपने एहसासों को और उन खामोशी को जो शायद कई दिनों से आपके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इसी एहसास के साथ ये बेहद खूबसूरत कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: अक्सर लोग खामोशी और तन्हाई को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तन्हाई तब महसूस होती है जब हमें किसी की कमी सताती है, कमी खलती है, लेकिन खामोशी वो लम्हा है जब हम खुद से मिलते हैं। कभी सुबह जल्दी उठकर छत पर बैठिए या फिर शाम ढलते हुए आसमान को देखें, वहाँ कोई शोर नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ सुनाई देता है। शायद इसलिए गजलें भी ऊंची आवाज में नहीं बल्कि दिल की आवाज में सुनी जाती हैं, और हर शेर अपने साथ जो है वो एक एहसास लाता है, और हर एहसास हमें अपने थोड़ा और करीब ले आता है। बहरहाल रंगी महफिल के इस अंजुमन में हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद।

जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर रोज बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनसे बल्कि बरसों बाद मुलाकात हो तब भी दिल वहीं से बात करना शुरू कर देता है जहां कभी आपने उस रिश्ते को छोड़ा था। और ऐसे रिश्तों में अल्फाज कम होते हैं बल्कि भरोसा ज्यादा होता है। हमारी जिंदगी

अगर एक भी ऐसा रिश्ता है जहां हमें अपने होने का सबूत जो है वो नहीं देना पड़े, तो समझिए कि आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। वैसे गज़लें भी कुछ ऐसे ही रिश्तों जैसी होती है, उन्हें बार बार सुनने की ज़रूरत नहीं होती, बरसों बाद भी सुनो तो लगता है कि जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई है। बहरहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। और अब ऐसी एक गज़ल जो रिश्तों की इसी नरमी और सादगी को अपने सुरों में समेटे हुए है,

जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही एक हुनर होता है। जब हम हर बात पर शिकायत करना छोड़ देते हैं तब दिल में सुकून की जगह बनने लगती है। पेड़ कभी ये शिकायत नहीं करता कि पतझड़ क्यों आया, उन्हें मालूम होता है कि बाहर फिर लौटेगी। इंसान भी अगर हर मुश्किल को आखिरी मंजिल नहीं बल्कि एक गुजरता हुआ मौसम समझ ले तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अब अगला कलाम आप तक पहुंचाने की कोशिश है और ये ऐसा कलाम है जिसमें हर शेर में सब्र, एहसास और मोहब्बत की खूबसूरत खुशबू भी है, दर्द भी है, जलन भी है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM के लहरों पर। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। और साहब, कभी आपने महसूस किया है कि सुकून हमें हमेशा वहाँ मिलता है जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, यानी मिट्टी की सौंधी खुशबू, बरसात की पहली फुहार, या फिर सुबह की ठंडक, या फिर किसी अपने का बिना वजह पूछ लेना कि कैसे हैं आप। बहरहाल, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत शायद यही छोटे छोटे लम्हे हैं। हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतज़ार में इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और गज़लें भी हमें ये याद दिलाती हैं कि दिल को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ दो सच्चे अल्फाज उसे चाहिए और थोड़ी सी मोहब्बत और कुछ पल सुकून के, बस इतना ही काफ़ी है। बहरहाल, अब अगला कलाम आप तक पहुंचाने की कोशिश है जो दिल की नरमी और ज़िंदगी की सादगी को बेहद खूबसूरती से अपने सुरों में पिरो रहा है।

और जब कहा जाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में दो सफर तय करता है, एक सफर दुनिया का होता है और दूसरा अपने दिल का। वैसे दुनिया का सफर तो सबको दिखाई देता है, लेकिन दिल का सफर खामोशी से तय होता है। कभी कोई गजल सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और कभी कोई शेर सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समझ लीजिए कि वो गजल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके दिल तक पहुंचती है। बहरहाल अब आपसे इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि वक्त तो हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह आपसे एक इल्तिजा है कि अपना ख्याल रखें, और अब आप उनका तो ख्याल रखने ही लगे हैं जो अपना ख्याल रखते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल।

श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब पेश है अब तक की मुख्य खबरें। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन हेडरेस टनल का एक हिस्सा ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और लीजिए भाई सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो लीजिए आनंद लीजिए इन गीतों का।

की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार हिंदी में। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा इस महीने की 1 तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक

विधेयक पारित किया। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की तीसरा छठा चरण जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन हेड्रेस टनल का एक हिस्सा ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। ये थे मुख्य समाचार।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी साथी दुर्गेश और अब प्रस्तुत है, लीजिए सुनते हैं आकाशवाणी कार्यक्रम सुहानी रात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात। कार्यक्रम सुहानी रात का ये है आखिरी गीत और 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त दुर्गेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। मिजोरम सरकार सरकारी भर्तियों को बेहतर बनाने के लिए MPSC को मजबूत करेगी। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2 बजे

बजकर 3:03। और लीजिए अब आइए सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा कार्यक्रम भुलाए ना बने। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित कर दिया है। भारत में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और रात्रि के 3:05 होने को हैं और अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी रेनबो पर मिडनाइट मेलोडीज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

साथियों, आप सुन रहे थे मिडनाइट मेलोडीज में बॉलीवुड म्यूजिक FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है मिडनाइट मेलोडीज और इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार हमारी साथी अलमास रजा से। अगले घंटे में आप

जी हाँ साथियों, आप एक बार फिर जुड़ गए हैं FM रेनबो से 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:02 और यह है समय आपके कार्यक्रम सारेगामा का। तो लीजिए आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आप आनंद लेंगे कुछ खूबसूरत से गीतों का और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।